रस कित फल फिके फुल बक बके कम नवे पत मिठत निवे नानका गुंज गए तत सब कुन वे आप तो पर कुन बिना कोई।

0: को परन खड़े हैं तिना सवारे नानक का जिनको नदर करे महला दूजा।
1: आप भी सज करे अब जब

0: आके कि रोज जपजी साहब दा पाठ करदे आ, रोज पुछना चाहिदा सानू किम सचियारा होई है किम कूड़ा टुटै पाल। महाराज जी ये दीवार जड़ी सानू अगे नहीं वधन दे रही कूड़ दी, इनू तोड़ के किवें अगे लंघीए। असी सचियार होण लई आए आ, जन्म सवारन लई आए आ, ताकि उस मालिक दे दर ते साडी ढोई बन जाए। तमारे कहिंदे गुरमुख गुरु दे गुरमुख दे खखे नूं सिहारी। जिहड़े गुरु दी गल मन के तुरन वाले ने गुरु दे सन्मुख, फिर उहनां नूं उस दर उत्ते सचियार दी मोर लग जांदी है वी इह सचियार है। फिर हर साचे माहे समाहे, फिर उह हरी परमेश्वर दे दर ते उहदे विच सदा वास्ते लीन हो जांदे हन।
1: सच वेला मूरत सच, जित सचे नाल प्यार।
0: जित जदों सचे नाल प्यार बन जावे, जिस समय जिस घड़ी मेरे वास्ते ओ समा भी सफल है, ते मेरे लिए ओ घड़ियां दो घड़ियां दा समा भी सफल है। वेला कहिंदे समय नूं, मूरत मूरत दे तत्ते नूं जिहड़े गुरबाणी पढ़न वाले समझ रखदे आ। तत्ते नूं औंकड़ है घड़ी दो घड़ी दा समा, ते जे तत्ते नूं सिहारी लग गई फिर अर्थ बदल जाणा है, फिर इहदा अर्थ है मूर्ति, फिर स्त्री वाचक हो जाणा है। तत्ते नूं सिहारी लग गई अर्थ ही बदल जाणा है। कई कहिंदे जी इह लग मात्र नाल की होणा है, अर्थ बदल जांदा है। तत्ते नूं सिहारी लग गई मूर्ति पिक्चर तस्वीर, ते जे तत्ते नूं औंकड़ लग गई मूरत, इह समें नाल जोड़िया गया है घड़ी दो घड़ी दा समा। कहिंदे ने इह जिहड़ा वेला इह जिहड़ा थोड़ा घड़ी दो घड़ी दा समा है, इह मेरे लई मुबारक हो गया, इह मेरे लई सच्चा हो निबड़िया, क्योंकि जदों सच्चे नाल प्यार पै गया इह समा सफल है मेरे लई। आपां संगत कर रहे हां, बाणी पढ़ रहे हां, सुन रहे हां, कीर्तन है कथा है, इह समा सफल है, इह समा व्यर्था नहीं जाएगा, इह समा सफल है, ये सानू सच नाल जोड़ रहा है। इसे समय दुनिया देखो कूड़ नाल भी जुड़ी बैठी होएगी, बेकारा नाल भी जुड़ी हुई होएगी, पर असी सच नाल सच ये समा सानू सच नाल जोड़ लिया, जिदे विच साडा प्यार सचियार परमेश्वर नाल पै रहा है। इसलिए महाराज जी कहिंदे ने कि सच वेला मूरत सच, जित सच्चे नाल प्यार। जिहड़े समय सच्चे नाल सच्चा प्रेम बनदा है, वह मेरे लिए घड़ी दो घड़ी दा समा सच है।

गुरु महाराज जी कृपा करन। अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे बाणी च चलना है, उदे हुकम दे विच राजी हो के अपना जन्म जे असी सवारना है तो सानू नाम बाणी दे रंग विच रंगना पएगा। बाणे और बाणी दे धारनी बनीए ताकि लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले जीवन बन सके। अज दी विचार करदे आं, बेअंत गलतियां भुल्लां होईयां सतगुरु बख्श देण, अगे तो समत सोझी दे के निवाजण जी। आप सारियां दियां हाजरियां लेखे दे विच लगण, सतगुरु जी दे पावन बचन अपने हिरदे विच वस

अंदरम श्री असादिवार विशब्द कीर्तन गुरबाणी लड़ीवार कथा विचारम से पौड़िया आनंद साहब जी के पाठ की अरदास जी अखर वादा घाटा भूल चुक माफ करने आप दिया दे दर ते समूह साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करने तिल फुल पेटावा दर प्रवान करनिया यात्रा में सफल करनिया धरों करों गुरसिखी जीवन नाम बाणी दियाँ दातां बख्शनिया कलंगी धर सचे पातशाह जी आप जिया ने कृपा करने मेहरामत करनी आन वाला समा आप जिया दी याद आप जिया दे प्रेम दे विच बतीत करवावना आप जिया दे हजूर पवित्र कड़ा प्रसाद जी देख सा जी के हाजिर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद समूह साध संगत विच वरतान दिया गया बख्शो जो जी सके आप जिया दा पवित्र नाम सतनाम श्री वाहिगुरु जपे आप जी करो कृपा अपनी अमृतमई बाणी विचों पावन पवित्र हुक्म दी दात बख्शो हुक्मानुसार जीवन जाउन दी समर्था बख्शो अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहे बंद होवना नानक नाम चढ़दी कलम तेरे पानी सरबत दा।

वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई ते आए फिरंगद गुरते अमरदास राम दास भी सहाय हर जन हर गोविंद नो सिमर श्री हर राय।

सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीयां दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां अठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडठ कीता

कार्या सिखी के सांस्वासनाल निवाही तेना दिक मैदा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी। पंजा तख्ता सर्वात गुरुद्वारे आंदा ध्यान तरके बोलो जी।

सिखानु सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, प्रोसा दान, दान, सरदान, नाम दान, श्री

पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जी विखे शब्द कीर्तन से पौड़िया आनंद साहब जी के पाठ की अरदास है जी। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी आप जी आंदे दर ते समूह साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल भेटावां दर प्रवान करनिया यात्रावां सफल करनिया धरो करो गुरु सिखी जीवन।

पवित्र कड़ा प्रसाद जी देख सज के हाजिर है। धर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद, समूह साध संगत विच वल पाउण दी आग्या बख्शो। जो जी सके आप जियां दा पवित्र नाम सतनाम श्री वाहे गुरु जपे। आप जी करो कृपा अपनी अमृतमई बाणी विचों पावन पवित्र हुक्म दी दात बख्शो। हुक्म अनुसार जीवन जिउण दी समर्था बख्शो। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी, सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहे बंद होवन। नानक नाम चढ़दी कलम

की सब सिखन को हुक्म है, गुरु ग्रंथ जी माने ओ, जो प्रभु को मिल बोच है, राज करेगा खालसा, खुआर हुए सा मिलेंगे, खुआर हुए सा मिलेंगे, बोले सोनिहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए सजन सच्चा पातशाह सिरस्थान देसाहो जिस पास बैठया सोहिया

गुरपुर ते जानी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत

रंग परंग अनेक न जपन करतवा जिया तर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरा बस तेरा कृपला तेरा कर...

सर्व ठौर मोहो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो बारी सर्व ठौर मोहो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंक तर नहीं आने राम रहीम प्राण कुरा अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सभाए बहुभेद कहें हम एक ना जान्यो सिरियस पां

0: दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ के गए हो तो हरो द्वार गहे की लाज अस गोविंदास तोहा सगल द्वार कौ छाड़ के गए हो तो हरो द्वार बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहा राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता वाया सह सिति मनवजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया शब्दो थंगावो हरी के राव मान जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओहो करे तेरा कार्ज सब सवारना सवना गलना समृत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच्चे साहेबा क्या नहीं घर तेरा करदा तेरा सब किसे है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहेब क्या नहीं घर तेरे सचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जैना भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए बसिया जैनों इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटों जिस दिया एह वड़िया कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो सचा नाम मेरा आधारो वाजे पंशव तित कर सुभागे कर सुभागे शब्द बाजे कला जित कर तारिया पंज दो तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कहे नानक तें सुख होआ तित कर अन्नाद बाजे आनंद सुनहो बड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाए उतरे सगल बसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पये सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पोनी कहते पवित सतगुर रहा पर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनाहद तूरे सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर रहा भर हुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागी वाजी अनहद तुरे। मुंदामणी महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पैया सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को भावे जे को भुंचै तिसका होए उधारो एह बस्त तजी नहीं जाई नित नित रखो और तारो तम संसार चरण लगत रिये सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पायोई तरस पया बेहरामत होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरे आ तरस पया बेहरामत होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: ठाकुर तुम पहि अरदास जियो पिंड सब तेरी रास।

अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाए।

पंजवा जित पार ब्रह्म चित आया सो कर दे वसाया सुख सागर गुर पाया ता सहसा सगल मिटाया जित पार ब्रह्म चित आया सो कर दे वसाया सुख सागर गुर पाया ता सहसा सगल मिटाया।

जय कर की आखिए करते कहुए विचारो तित कर गाओ सोहेला सवरे हो शरण हारो तुम गावो मेरे नृपौ का सोहेला हाँ आरी जित सोहेला सदा सुखोय रहाओ नित नित जेड़े संभालियन देखै गा देवन हार त्रिदान कीमत ना पवै तिस दाते कौन समार संबत साह लिखिया मिल कर पावो तेल देव सजन आसी सड़िया जो होवै साहिब सुमेल कर करियो पहुँचा सदड़ी नित पवन सदन आर सिमरिय नानक से देवन रागा सा महला पहला छे कर छे गुर छे उपदेश गुर गुरे को वेश अनेक बाबा जय कर करते कीर्तो ए सो कर राख वडाई तोय रहाओ विश्वे चस्या कड़िया पैरा थिती वारी माँ हुआ सूरज को रोता नेक नानक करते के ते वेश रागत नासरी महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तार कमंडल जनक मोती तूप माले अण लो पवन चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पवखंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ सहस पव नैन नन नैन है तोय कौ सहस मूर्त नना एक तोई सहस पद बिमल नानक पद गंध बिन सहस तव गंधे विचलत मोही सब मैं जोत जोत है सोए दिस दै चानन सब मैं चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत पावे सो आरती होए हर चरण कवन मकरंद लोभित मन वन दिन मोहे आई प्यासा कृपा जल दे नानक सारे कोए जाते त्रिनाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर भव भरिया मिल साधु खंड रखंडाए पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन रलि मंडल मंडाए कर साधु उंजली पनवडाए कर डंडाओत पनवडाए राव साख तारा साधना जान्या तनिया तनहो में कंडाए ज्यो ज्यो चलै चुबै दुख पावे जमकाल सह से डंडाए हर जन हर नाम समाणी दुख जन मरण पव खंडाए अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बो सोभ खंड।

तारा रस गुट्टै, मत माता संतोख पिता सर सहज समायो, आजोनी संभवयो जगत गुर।

क्लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप को कत होवे जियो। धर्म करम पूरे सतगुरु पाईए जा।

अपार निरभो निरंकार अकथ कथनहार तुझे बुझाइय परम भूले संसार छूटो जूनी संगार जम को ना डंड काल गुरमत त्याई मन प्राणी मुगद विचार एनस जप